0: মাৰ্ক টুৱেইনে কৈছিল, ভাল মানুহ হোৱাটো এটা মহৎ কাম, কিন্তু আনক মহৎ হ'বলৈ শিকোৱাটো তাতোকৈ মহৎ কাম।
1: এয়া আকাশবাণী তেজপুৰ।
0: খন্তেক পিছতে
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत एमवी कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर होरमूज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने

स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के सातवें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে অভিযানৰ সময়ছোৱাত আগতীয়া পৰিকল্পনা, আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় আৰু ফলপ্ৰসূ সেৱা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। যোগ্য হিতাধিকাৰীসকলৰ ওচৰলৈ চৰকাৰী আঁচনি আৰু সেৱাসমূহৰ সুবিধা সহজে লৈ যোৱাৰ বাবে সকলো বিভাগ আৰু ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ৰ বিষয়াক সমন্বিতভাৱে কাম কৰিবলৈ তেওঁ নিৰ্দেশ দিয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ অৰ্থাৎ NHAI আৰু জিলা পথ সুৰক্ষা সমিতিৰ এখন বৈঠক কালি নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয়। জিলা আয়ুক্ত আৰণ্য শইকীয়াৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত জিলাখনৰ পথ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰা আৰু দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস কৰাৰ উদ্দেশ্যে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। ইয়াৰ ভিতৰত পথৰ গাঁতসমূহৰ ক্ষিপ্ৰ মেৰামতি, গছ গছনিৰ ডাল নিয়মীয়াকৈ কটা, নিয়ম উলংঘা কৰি পথৰ ওপৰত কৰা পাৰ্কিং উচ্ছেদ আদি বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰি পুৱা 9 বজাত শুনিবলৈ পাব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता के साक्षी हैं।
3: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वहीं सामाजिक सुरक्षा संहिता वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती हैं। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
4: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए

0: एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
1: ये चार श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
2: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चार धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
3: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का

0: उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
1: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जल भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुँचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
2: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो कीन यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे। पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी। गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है, गृहमंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: বিবিধ ভাৰতী গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ আপুনি আমালৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব পাৰে। আমাৰ নম্বৰ হৈছে 6003166944। পুৱা প্ৰচাৰিত ফোন ইন অনুৰোধৰ গীতৰ অনুষ্ঠান সুৰধ্বনি আৰু

0: पराग माला। पराग माला।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का परागमाला लाइव कार्यक्रम, जहां हर सुर के साथ जुड़ती है एक कहानी और हर कहानी में बसती है यादों की मिठास। मैं हूं सीमा राउत, लेकर आई हूं संगीत की एक अनमोल पेशकश। सुनिए दिल की बात गीतों के साथ। आज मैं आपको एक ऐसे संगीत में यात्रा पर ले चलूंगी जहां सुरों में बसी है यादें, कहानियां और जज्बात। चलिए शुरू करते हैं आज की ये सुबह। श्रोताओं, इस प्यारे इसे कार्यक्रम में मैं आप सभी का बड़े ही स्नेह और अपनेपन के साथ स्वागत करती हूँ। बस यही दुआ है कि जहाँ भी आप हमारे आवाज़ से जुड़े हैं, पूरे उत्साह और चेहरे पर एक खिली हुई मुस्कान के साथ आज के हर एक पल को जी रहे होंगे। श्रोताओं, आज का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक बेहद खास शख्सियत के नाम दर्ज है। वो शख्सियत जिनकी चाल में एक अनोखी मस्ती थी, कोट का कॉलर हमेशा उठा रहता था और सिर पर एक खास तिरछी टोपी सजती थी, जिन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और जिंदगी का असली राज हमेशा एक जवान दिल में छुपा होता है। क्या आप पहचान पाएं कि हम किस फनकार की बात कर रहे हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ज़रा इस अमर नगमे के हर एक लफ्ज़ को सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि यह बेफिक्री अंदाज किसका हो सकता है।

मा के सदाबहार सुपरस्टार देवानंद साहब की। जब हम देवानंद साहब की बात करते हैं तो हमारे सामने सिर्फ एक अभिनेता की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की तस्वीर आती है जिसे अपनी जिंदगी और अपने काम से बेहद मोहब्बत थी। काला पानी, 9-2-11, CID, ज्वेल थीप और हरे राम हरे कृष्णा जैसे फिल्मों के जरिए उन्होंने पर्दे पर जो जादू बिखेरा वो आज भी बेमिसाल है। उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी कभी ना खत्म होने वाली उम्मीद और हौसला। उनका मानना था कि चाहे राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, इंसान को कभी रुकना या झुकना नहीं चाहिए। वे कहते थे कि जो भी बीत गया उसे भूल जाओ और जो आने वाला है उसकी उम्मीद में हर पल मुस्कुराते रहो। देव साहब की इसी ऊर्जा और मोहब्बत के एहसास को महसूस करते हैं इस अगले सदाबहार गीत के साथ।

श्रोताओं, देवानंद साहब के दौर का संगीत भारतीय सिनेमा का सबसे सुनहरा अध्याय माना जाता है। संगीतकार सचिन देव बर्मन की धुनें, मजरूर सुल्तानपुरी व शैलेंद्र के लिखे बोल और उस पर किशोर कुमार व मोहम्मद रफी के सुर, जब ये संगम देव साहब के चेहरे पर उतरता था तो पर्दे पर जादू बिखर जाता था। उनके गानों में एक ऐसी ताजगी और लय होती थी कि सुनने वाले का पैर खुद ब खुद थिरकने लगता था। रेडियो के जरिए आज भी जब हम वो तराने हमारे कानों में पड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त पीछे मुड़ गया हो और जिंदगी फिर एक नई उमंग से भर गई हो। आइए उसी सुनहरे दौर की खुशबू समेटते सुनते हैं ये बेहद चुलबुला और प्यारा तराना।

श्रोताओं, जब बात देव साहब के निदर्शन और उनकी हर एक बार कुछ अलग करने की सोच की होती है, तो फिल्म हरे राम हरे कृष्णा का जिक्र सबसे पहले आता है। इस फिल्म ने न केवल उस दौर के युवाओं के हिप्पी कल्चर और पश्चिमी प्रभाव को पर्दे पर उतारा, बल्कि भारतीय सिनेमा के संगीत को एक नई, बिल्कुल नई और आधुनिक दिशा दी। पंचमदा यानी आर.डी. बर्मन के जबरदस्त वेस्टर्न बीट्स और आशा भोसले जी की नसीली आवाज ने इस गाने को भारतीय संगीत का एक ऐसा ट्रेंडिंग आइकॉन बना दिया जो आज भी हर पीढ़ी को थिरकने पर मजबूर कर देता है। आइए सुनते हैं फिल्म हरे राम हरे कृष्णा का ये ऐतिहासिक और बेहद लोकप्रिय गीत।

श्रोताओं, देवानंद का जीवन हमें सबसे बड़ी सीख ही देता है कि जिंदगी में कभी भी मायूसी को जगह मत दीजिए। हर दिन एक नया पन्ना है, एक नया अवसर है। जब तक दिल में उम्मीदें और आंखों में सपने जिंदा हैं, तब तक इंसान कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। अपने सपनों का पीछा करते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और हर सुबह का स्वागत एक नई मुस्कान के साथ कीजिए। तो चलिए इसे कभी ना थमने वाली जज्बे के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत क्लासिक गीत।

श्रोताओं, आज परागमाला लाइव पर हमने याद किया सिनेमा के उस सदाबहार सितारे को जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ सकती। आज के दिन देवानंद साहब के उस जिंदा दिली अंदाज को अपनी जिंदगी में भी शामिल कीजिए, मुश्किलों को धुएं में उड़ाइए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए। मैं सीमा रावत अब आप सभी से विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे परागमाला लाइव के अगले सफर में। जाते जाते सुनिए ये दिल को गहराई से छू लेने वाला और बेहद सुकून भरा गीत। नमस्कार।

परागमाला परागमाला लाइफ हुनिले आग पढ़ाले हिमा राउते एया आकाशवाणी गुवाहाटीर महाबाहू।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া 12 বজাত হিন্দীত আৰু 12:05ত দুপৰীয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে বিশাল শর্মা। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिसिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने

0: वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी अक्वापदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पुरुष कबड्डी टीम का आज फाइनल में ईरान के साथ मुकाबला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरुद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী দুপৰীয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো পৰিস্মিতা দিহিঙীয়াই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে ডিজিটেল স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ, নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত, ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত সোমনাথ যাত্ৰা 2026 অনুষ্ঠানৰ আয়োজন আৰু এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ মহিলা কাবাডী দলৰ সোণৰ পদক অৰ্জন। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। ডিজিটেল স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসমে ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰিছে। আৰোগ্য মন্থন 2026 শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীত মধ্যম ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল শ্ৰেণীত সৰ্বাধিক সংখ্যক আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল মিছনৰ সৈতে সংযুক্ত আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ আৰু উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ বাবে অসমে এই সন্মান লাভ কৰিছে। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যসেৱাক অধিক সহজলভ্য, সংযুক্ত আৰু প্ৰযুক্তি নিৰ্ভৰ কৰি তোলাৰ দিশত অব্যাহত থকা প্ৰচেষ্টাৰ এয়া হৈছে উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি। তেওঁ ইয়াৰ বাবে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগ, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসম আৰু আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল মিছনৰ সৈতে জড়িত আটাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া 1 বজাত হিন্দীত বাতৰি আৰু 1:05 ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই বিশাল শৰ্মা। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरियों को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81वें सत्र में वैश्विक सहयोग को फिर मजबूत करने, सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और शांति, गरिमा तथा समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे

0: बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में भी आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष कबड्डी के फाइनल में आज भारत और ईरान आमने सामने होंगे। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। भारतीय टीम ने 1763 अंक बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन 1773 अंक लेकर खेलों के रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक के साथ जीता, और जबकि कजाकिस्तान को कांस्य पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will address the high-level session of the 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. According to the UN, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals and promoting collective action for peace, dignity and equality. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea and Black Sea. The minister said that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jaishankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the UN General Assembly in New York. Dr. Jaishankar announced a new initiative by India and Liberia together to draw greater attention to the safety and security of ships and seafarers. He said these incidents could no longer be viewed as isolated cases, as commercial ships and sailors have faced a series of attacks across key waterways. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has emphasized the need to harness the possibilities offered by artificial intelligence, anticipate its consequences and mitigate its risks. The minister made these remarks while co-chairing an event on AI in the context of international peace and security, with an emphasis on maritime security, alongside Foreign Minister of Greece, George Yerapetridis. During the event, Dr. Jaishankar reaffirmed that AI and maritime security remain important priorities for India. Foreign Secretary Vikram Misri has emphasized the urgency of UNSC reform to ensure greater voice and representation for developing countries. Delivering India's statement at the 50th annual meeting of foreign ministers on the Group of 77 at the 81st session of the UN General Assembly in New York, Mr. Misri called for collective efforts to enable the global South.

0: Communication and Policy Research, the ministry said that the release of the magazines mark an important expansion of CSIR, National Institute of Science Communication and Policy Research's popular science publishing portfolio. India has made a strong medal haul at the Aichi Nagoya Asian Games today, adding 4 medals across kabaddi, athletics, shooting and squash. The latest results have taken India's overall medal tally to 27. A report.
1: The Indian women's kabaddi team clinched the gold medal, defeating Iran 37-34 in a closely contested final. Captain Pushpa Rana led India to victory. In athletics, Savan Barwal bagged silver in the men's marathon, ending India's 44-year wait for a podium finish in the discipline, clocking 2 hours, 11 minutes and 37 seconds. His performance marked a personal best and a new national record. In shooting, Tilotama Sen, Vidarsaki Vinod and Ashi Choksi secured silver in the women's 50-meter rifle 3-position team event, scoring 1,763 points. In mixed double squash, Joshna Chinnappa and Vilvan Senthil Kumar won bronze. With these 4 medals, India are currently placed 12th in the medal standings and its overall tally has reached 27 with 3 gold, 11 silver and 13 bronze. Komadi Parik, Akashwani News, Delhi.
0: And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls to leverage AI-created opportunities while addressing associated risks. Co-chairs event on AI in the context of international peace and security in New York. Mr. Jaishankar to address 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. Foreign Secretary Vikram Misri calls for urgent UNSC reform to give developing nations greater voice. Continuous rain in Odisha, Chhattisgarh, Bihar and Uttar Pradesh disrupts normal life. Heavy rainfall alert for today over parts of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Iran proposes deal to reopen Strait of Hormuz in 7 days if US meets its conditions. US rejects the proposal. Indian women's kabaddi team clinches gold, beating Iran at Asian Games, wins 2 silver medals in women's shooting and men's marathon. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडबरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमरीका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी

0: किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
2: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहां पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जनस्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।

0: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केउंझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले चार दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
3: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के एक क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
5: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
3: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया।

0: एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुमकल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: মিডিয়া মৱেভৰ 411.5 মিটাৰ 729 কিলো হাৰ্টজ এফ এম বেণ্ডৰ 101.6 মেগাহাৰ্টজত এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া শুনক পাশ্চাত্য সংগীতৰ অনুষ্ঠান।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस्मत चुगताई का लिखा नाटक बांदी।
1: कौन कौन है? अरे ये मसहरी के नीचे कौन है? निकल निकल, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। निकल। ओ ये पलंग के नीचे घुसी क्या कर रही है? कौन है तू?
2: हलीमा।
1: हलीमा, चल बाहर निकल। लाहौल वाला
2: नहीं
1: नहीं निकलेगी। अच्छा ठहर जा।
2: अल्लाह मेरी टांग छोड़िए।
1: तू बाहर निकल।
2: नहीं आप मारेंगे।
1: जरूर मारूंगा। निकल तो, निकल सीधी तरह।
2: आए मेरी चोटी, आपके हाथ जोड़ो छोटे सरकार, मैं मर गई। अल्लाह।
1: क्या कर रही थी ये मसहरी के नीचे दबकी? क्या कर रही थी?
2: कुछ नहीं सरकार।
1: सरकार की बच्ची, क्यों आई थी कमरे में?
2: वो छोटे सरकार, उन्होंने नया बुबू ने भेजा।
1: तुझे नया बुबू ने हमारे कमरे में भेजा था?
2: जी।
1: झूठी।
2: अल्लाह कसम।
1: क्यों भेजा था?
2: वो बस भेजा था। सच्ची छोटे सरकार, मेरी गर्दन टूटी।
1: आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तू मेरे कमरे में आई कैसे?
2: सरकार कसम से बुबू ने।
1: झूठी।
2: सरकार आप बुबु। सरकार।
1: मगर बुबू ने तुझे क्यों भेजा था? बोलती क्यों नहीं? बता, नायाब बुबू ने तुझे हमारे कमरे में क्यों भेजा था?
2: वो आपके आपके पैर दबाने के लिए।
1: हमारे पैरों में क्या हो गया?
2: फुटबॉल खेलकर आए होंगे ना। लेट जाइए सरकार, मैं पैर दबा दूं।
1: हमारे पैरों में दर्द नहीं
2: सरकार।
1: चल भाग यहां से, और अगर फिर आई तो जूते पड़ जाएंगे। अरे सुना नहीं? निकल हमारे कमरे से
2: सरकार।
1: अब जाती है कि
2: मुझे ना निकालिए सरकार।
1: क्या पक रही है गधी? अब हमारा हाथ छोड़।
2: मेरे अच्छे सरकार।
1: देख हलीमा, तू अभी बच्ची है, तू समझती नहीं रात को किसी लड़के के कमरे में जाना अच्छा नहीं।
2: छोटे सरकार, अपनी लौंडियों को यूं न धुतकारिए।
1: ओहो कैसी बातें कर रही है हलीमा।
2: मैं आपकी बांदी हूँ छोटे सरकार, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था। मुझे मत ठुकराइए, मैं आपकी खिदमत करूंगी आपके कदमों में।
1: खामोश बेवकूफ, तू जानती है तू क्या कर रही है? हम बांदी के रिवाज के सख्त खिलाफ है। हलीमा तुम बांदी नहीं, तुम्हारे माँ बाप शरीफ इंसान थे, कहत के जमाने में मजबूर होकर वो तुम्हें दे गए थे।
2: मेरे माँ बाप ने मुझे 10 सेर अनाज के बदले मुझे बेच दिया था, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था।
1: ये इंसानों की खरीदो फरोख्त से हमें घिन आती है। नहीं हलीमा, तुम बांदी नहीं बनोगी, किसी अच्छे नेक आदमी से तुम्हारा ब्याह कर दिया जाएगा।
2: नहीं सरकार, ब्याह शादी हम बदनसीबों के हिस्से में नहीं।

0: अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मुझे कैसर नवाब के हाथ बेच दिया जाएगा।
1: कैसर नवाब?
0: जी, कैसर नवाब को मालूम नहीं कौन सी बीमारी है, सर से पैर तक सड़ रहे हैं।
1: मगर ये नहीं हो सकता।
0: यही होगा, उनके शिकारी कुत्तों की जोड़ी हशमत नवाब आपके बड़े भाईजान को बहुत पसंद है। 1800 की है कुत्तों की जोड़ी, वो कई बार मुझे मांग चुके हैं।
1: नहीं, ये हरगिज नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पर भरोसा रखो हलीमा, हम ये गंदा व्यापार नहीं होने देंगे। हम प्यारी अम्मी से कहकर।
0: उनके हुक्म से तो नया बूबू ने मुझे भेजा है।
1: ये कैसे हो सकता है? प्यारी अम्मी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती हैं।
0: इसलिए कि मैं उनके लाडले की खिदमत में मुकर्रर की जाऊंगी।
1: मेरी अम्मी इतनी बेरहम नहीं हो सकती।
0: ये बेरहमी नहीं मेरे भोले नवाब, उनकी ऐन नवाजिश है। नया बूबू तो कहती थी आज सरवरी को आपकी खिदमत के लिए भेजा जाए।
1: सरवरी को? ला हौला वला कुव्वत।
0: हाँ सरकार, बूबू मुझसे खफा नहीं क्योंकि मैंने जब्बार के मुंह पर जूती मार दी। मुए ने मेरी चुटकी काटी, मैंने पैर से जूती उतार कर दी नाक पर।
1: अच्छा किया, ये हरामजादा जब्बार बड़ा चलता पुरसा है।
0: नयाब बूबू ने बड़े नवाब से मुझे जब्बार के लिए मांगा, मगर उन्होंने कहा हलीमा तो मेरे छम्मन की है। अच्छा सरकार।
1: नहीं नहीं हलीमा छोड़ो।
0: मेरे नवाब।
1: हलीमा जाओ हलीमा, ये गुनाह है। Get out, you stupid girl.
0: छोटे सरकार।
1: तुम मुझे गुनाह के गार में घसीटना चाहती हो? निकल जाओ। Get out. Oh my God, my God.
0: या अल्लाह।
2: अरे भाई जहांगीर साहब और छमनिया, अरे भाई क्या हाल चाल है?
1: आपकी दुआ है अफजल भाई।
2: अमा यार, क्या हर वक्त किताबों से सर मारा करते हो?
1: इम्तिहान आ रहे हैं, मुझे जरा फुर्सत कम है। कहिए क्या काम है?
2: हम आए हैं और तुम्हें फुर्सत नहीं, ये तो पुराना किस्सा है। अमा अमा ये क्या किस्सा है?
1: कौन सा किस्सा?
2: ये ही कि रात को तुम्हारी खिदमत में बांदी पेश की गई और तुम्हारे हाथ पैर फूल गए।
1: ऐसी तो कोई बात नहीं, दरअसल मैं लौंडियों बांदियों के रिवाज को पसंद नहीं करता।
2: वजह?
1: मैं इसे बदकारी समझता
2: हूँ। ओहो, मगर मियाँ हमारे यहाँ ये दस्तूर बरसों से चला आ रहा है।
1: मैं इसे गुनाह समझता हूँ।
2: अमा घास खा गए हो? क्या हमारे बुजुर्ग गुनाहगार थे?
1: कतई गुनाहगार थे और मुजरिम भी।
2: ला हौल वला कुव्वत, ये भूसा तुम्हारे दिमाग में ये वाहियात किताबें पढ़ पढ़ के भर गया है। किसी ने सुन लिया मियाँ तो पागलखाने पहुंचा दिए जाओगे।
1: ये घर कुछ पागलखाने से कम है? जमाने जहालत के रिवाज अभी तक कलेजे से लगाए बैठे।
2: मैं हकीम साहब किबला के मतलब से होकर आ रहा हूँ, वो एक मुकवी माजून तैयार करवा रहे हैं।
1: मुझे मुकवी माजून की नहीं अफजल भाई, तन्हाई की जरूरत है, इम्तिहान करीब आ रहे हैं।
2: अमा यार लानत भेजो साले इम्तिहानों पर।
1: आप तशरीफ ले जाइए।
2: अमा हम तो तुम्हारे ही भले को।
1: आप सीधी तरह जाएंगे या नहीं?
2: बुजुर्गों की नहीं सुनोगे तो पछताओगे छमन मियां। बेचारी मुमानी साहबा सर पकड़े बैठी हैं, बड़े साहबजादे तो गए काम से, अब छोटे भी चले। मियां रियासत कोरट हो जाएगी अगर औलादे नरीना ना पैदा हुई।
1: औलाद नरीना शादी के बाद ही पैदा होगी।
2: मगर बांदी से क्यों भी देखते हो, शादी वक्त आएगा हो जाएगी।
1: और बांदी?
2: बांदी काम आएगी।
1: और हुरमा खानम बर्दाश्त करेंगे।
2: तुम्हारी मंगेतर पढ़ी लिखी है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो खानदानी रस्म और रिवाज को नहीं समझती हैं।
1: यानी मेरी बांदियों पर उन्हें कोई एतराज ना होगा?
2: नहीं, बांदी बांदी है और बेगम बेगम।
1: तो मैं ऐसी बेवकूफ लड़की से शादी नहीं करूंगा।
2: अमां अजीब हवनक आदमी हो।
1: अगर कोई औरत अपने मियाँ की बांदी को बर्दाश्त कर सकती है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो शोहर से मोहब्बत नहीं करती या उसमें खुददारी नहीं। मैं जिस औरत से शादी करूंगा उसे बराबर के हुकूक दूंगा, अगर मैं बांदी रख सकूंगा तो उसे भी गुलाम रखने की इजाजत।
2: ला हौल वला कुव्वत, मियाँ तुम्हारा भेजा तो सलामत है।
1: जब अब्बा हुजूर तवायफों के यहां जाते थे तो मैं सोचा करता था हमारी प्यारी अम्मी के दिल पर क्या गुजरती हो।
2: ये तुम्हें क्या हो गया है साहबजादे?
1: जब्बार अब्बा हुजूर की बांदी नायाब का बेटा है, मैं जब उसे अब्बा हुजूर की मोटर चलाते देखता हूं मेरा सर शर्म से झुक जाता है। वो हमारा भाई है मगर उसके साथ गुलामों जैसा बर्ताव होता है। अब्बा हुजूर कैसे बर्दाश्त करते हैं? मैं और जब्बार नहीं पैदा करना चाहता।
2: तो एक काम करो साहबजादे।
1: क्या?
2: जाते जाते मैं मिनहारन भी को भेजे देता हूं, चूड़ियां पहन के बैठ रहो घर में।
1: शुक्र खुदा का, चले तो सही। कौन हलीमा, तुम फिर आ गई? नायाब बुबू?
0: मुझे नायाब बुबू ने नहीं भेजा, आज मैं खुद आई हूं।

0: हलीमा।
1: खुदा का वास्ता अच्छे नवाब, अगर मुझसे ऐसी घिन आती है
0: नहीं
1: तो।
0: हलीमा, हमें तुमसे घिन नहीं। तुम छोटी सी थी, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम बहुत रोई। हमारा नन्ना सा दिल तुम्हें रोता देखकर तड़प गया। हलीमा, तुम हमें बहुत प्यारी लगती हो, इतनी प्यारी कि तुम्हारी तरफ देखते हुए डर लगता है।
1: मेरे अच्छे नवाब।
0: नहीं नहीं हलीमा, हमारे इतने करीब ना हो। ये रात का सन्नाटा, इस पर तुम्हारे ये आंसू। हलीमा, हम इंसान हैं, फरिश्ता नहीं, हमारे अज़्म को पाश पाश न करो। तुम्हारे आंसुओं से हमारा गरेबान चल उठेगा, रहम करो हलीमा।
1: रहम की भीख तो मैं आपसे मांगने आई हूँ। कल ऐसा नवाब अपने शिकारी कुत्ते बेच रहे हैं, मैं आपकी हूँ मियाँ, अपनी हलीमा को बचा लीजिए।
0: हलीमा, मेरा एक दोस्त है, तुम उससे शादी कर लो, वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है।
1: मैं किसी की दुल्हन बनने से बेहतर आपकी लौंडिया बनना चाहूंगी।
0: मुझे बांदियों से घिन आती है, तो मैं तुमसे शादी करूंगा।
1: अल्लाह का वास्ता, शादी का लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालिएगा। याद नहीं, सिकंदर नवाब ने अपने निकाह की जिद की थी, उनके दादा ने निगोड़ी को जहर पिला दिया था।
0: कौन सिकंदर नवाब, वो पगले चचा?
1: हाँ, वो उसके गम में पागल होकर गली कुचों में खाक छानने लगे।
0: हम तुम्हें मरने नहीं देंगे हलीमा।
1: आपके फरिश्तों को कुछ पता नहीं चलेगा और आपकी हलीमा खाक में मिल जाएगी। आंख खोलकर आप ही को देखा और दिल में बसा लिया, आपकी बांदी बनना मेरे लिए मेराज से कम नहीं। आपकी और आपकी दुल्हन बेगम की खिदमत करूंगी और अपने नसीब को दुआ दूंगी।
0: नायाब बुबू की तरह और जब्बार पैदा होंगे, वो ड्योढ़ी पर पहरा देंगे या मोटर साफ करेंगे,
1: ये उनकी खुशकिस्मती होगी।
0: तुम जाहिल और बेवकूफ हो।
1: मगर हूँ आपकी।
0: ओहो, जाओ हलीमा, खुदा रह चली जाओ।
1: मुझसे पीछा छुड़ाना है तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दीजिए।
0: हलीमा, तुम्हारे हाथ कितने सर्द हो रहे हैं।
1: तो गर्म कर दो मेरे शहजादे।
0: हलीमा हलीमा, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। हलीमा, हम खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कसम खाते हैं कि तुम्हें अपनी बेगम बनाएंगे। तुम हमारी दुल्हन हो, खुदा और रसूल खुदा की कसम, तुम हमारी दुल्हन हो। हलीमा हलीमा।
2: हर बात की एक हद होती है नायाब। लड़के को तो जैसे जुनून हो गया है, दुनिया जहान का होश नहीं। बांदी न हुई, जी का आजार हो गए, अल्लाह रखे अपने बाप पर गए हैं।
3: ऐसा ही जुनून था, मगर जब जब्बार पेट में आया तो सब चाव चौचले खत्म। तेल देखिए, तेल की थार देखिए, मुझे तो लौंडिया इन दिनों कुछ मरझिल जैसी दिखाई देती है।
2: ऐ सच, तुम्हें खुदा की कसम।
3: हाँ बेगम, भलाई आंखों से कोई बच सकता है? अब कोई दिन जाता है जो साहबजादे के सारे चाव चौचले खत्म।
2: अभी तो कुछ गर्मी में कमी नजर नहीं आती है।
3: आ जाएगी, आप देखते जाइए। जी से उतरी कि साहबजादे घिन खाने लगेंगे।
2: तो फिर निगौड़ी को गांव भिजवा दो।
0: क्या गांव जा रही हो? क्यों?
1: मेरा जी चाह रहा है।
0: हमें छोड़कर चली जाओगी?
1: जल्दी आ जाऊंगी।
0: कितनी जल्दी?
1: थोड़े दिनों बाद।
0: कितने होते हैं थोड़े दिन?
1: यही कुछ 6-7 महीने।
0: 6-7 महीने?
1: आहिस्ता बोलो,
0: हम मर जाएंगे।
1: अल्लाह न करे, आपकी बलाएं मेरे सर, मेरे नौशा, बुरी फाल मुझसे न निकाली। अल्लाह अपने रहम और करम से आपकी खदमत के लिए जरूर वापस लाएगा।
0: और जो न लाया हलीमा, तुम्हारे जाने के ख्याल से मेरी जान खींची जाती है, छाती में सांस घुट रही है। तुम क्यों जा रही हो हलीमा? जान, ऐसा चीज डरता है कि तुम चली गई तो फिर वापस ना होगी।
1: नहीं नौशा, मैं बच जाऊंगी, सभी नहीं मर जाती। सनोबर की और बात थी, बड़े सरकार ने लात मार दी थी तो पेट में बच्चा मर गया था। हाय, मैं मर जाऊं, ये क्या कह रही हूँ?
0: बच्चा?
1: नहीं नहीं छोटे सरकार, मैं
0: मेरे सर की कसम खा।
1: नहीं अल्लाह, नहीं।
0: हलीमा, तू झूठ बोल रही है, इसमें रोने की क्या बात है?
1: मैं मर गई तो सरवरी आपकी खिदमत करेगी।
0: सरवरी? नहीं हलीमा, हमें किसी की खिदमत की जरूरत नहीं। तुम गांव नहीं जाओगी हलीमा।
1: जी।
0: बच्चा कब तक होगा?
1: 6 महीने बाद।
0: अगर रोएगा तो हम पाजी को बहुत डांटेंगे।
1: गांव से इस बदनसीब के रोने की आवाज आपके कानों तक कैसे पहुंचेगी सरकार?
0: तुम गांव नहीं जाओगी।
1: ऐसे

0: बर्बाद नहीं कीजिए सरकार।
1: मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा।
0: लीला मेरे भोले सरकार, ये महल का दस्तूर है।
1: हम इस घिनौने दस्तूर को तोड़ेंगे
0: सरकार।
1: शट अप।
2: घोड़े बचिए हशमत नवाब।
3: ये लीजिए।
2: ये शह वो मारा।
1: भाईजान, मुझे आपसे कुछ बातें करना थी।
3: मैं इस वक्त बड़े जोर की बातें जमी है, खुदा की कसम। लीजिए अफजल भाई, खा लीजिए, हमारा घोड़ा हजम ना होगा।
1: भाईजान,
3: मां क्या बेवक्त सर पर नाजिल हो जाते हो।
2: शह हशमत नवाब शह।

0: लीजिए अफजल भाई, खा लीजिए, हमारा घोड़ा हजम ना होगा।
1: भाई जान,
0: मां क्या बेवक्त सर पर नाजिल हो जाते हो।
2: शेह हजमत नवाब शेह।
1: प्लीज भाई जान, मेरी मौत और जिंदगी का सवाल है।
0: ओफो, कहो क्या कहना चाहते हो।
1: जरा मैं
0: अमा तकल्लुफ क्यों कर रहे हो, अफजल भाई से क्या पड़ता।
1: भाईजान
0: अमा कह भी चुको,
1: हलीमा को गांव क्यों भेजा जा रहा है।
2: क्यों इतना सटपटाते हो बरखुरदार, तुम्हारे लिए दूसरा इंतजाम हो जाएगा।
1: मुझे दूसरा इंतजाम नहीं चाहिए।
2: सरवरी जालिम, पटाखा है पटाखा, है क्या उठान है। अमा उस चिपकली से तुम्हें कह नहीं आती।
0: अफजल भाई अच्छा जाने दो, आगे चलो।
1: मैं उसे गांव नहीं भेजने दूंगा
0: मियां, ये महल का पुराना दस्तूर है।
1: वो गाय भैंस नहीं, वो
2: कहो कहो, शर्मा क्यों गए।
1: वो मेरे बच्चे की अमानतदार है।
0: शर्म करो मियां साहबजादे, बड़े भाई के सामने मुंह फाड़कर अपने करतूत की शेखी मार रहे हो। ला हौल वला कुव्वत।
2: महल की पॉलिटिक्स में मर्दों का दखल नहीं होता, प्यारी अम्मी जो मुनासिब समझती हैं वही करती हैं।
1: भाई जान,
2: और फिर सितंबर के महीने में हुरमा बीबी से तुम्हारा निकाह होने वाला है।
1: मैं हुरमा से शादी नहीं करूंगा, मेरी शादी हो चुकी।
0: बहुत खूब, वो कब।
1: मैंने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर हलीमा को अपना लिया।
0: और निकाह, काजी कौन था।
1: खुदा और रसूल के बाद काजी की जरूरत नहीं।
2: वल्ला, तुमने अपना निकाह खुद पढ़वा लिया, अच्छी दलील है।
0: जाओ मियां, क्यों वक्त जाया कर रहे हो। हाँ भाई अफजल भाई, दूसरी बाजी जमाए। ला हौल वला कुव्वत, सारा मजा किरकिरा कर दिया।
1: मैं हलीमा के साथ वो सब कुछ नहीं होने दूंगा जो सनोबर के साथ।
2: चमन मियां, तुम जामे से बाहर हो रहे हो, अपने बड़े भाई का दिल दुखाते तुम्हें शर्म नहीं आती।
1: मेरे बड़े भाई का दिल पत्थर का है, इन्हें दुख नहीं होता।
0: दूर हो जाओ मेरे सामने से, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। दफा हो जाओ यहां से।
1: भाई जान मैं
0: बदतमीज।
2: अरे अरे, ये क्या करते हो हशमत मियां, क्या करते?
0: मैं इस मर्दूत का खून पी जाऊंगा, इसे हिम्मत कैसी हुई।
2: चले जाओ चमन मियां, खुदा का वास्ता भाई चले जाओ यहां से।
3: बेगम साहिबा, एक बात कहूं।
4: कह भी चुको क्या कह रही हो।
3: नजम बिटिया भी तो अल्लाह रखे उम्मीद से है,
4: उसका इस वक्त क्या जिक्र ले बैठी।
3: अल्लाह सलामती से फरागत दिलाए। फरागत पाकर विलायत जाने के इरादा है।
4: हाँ हाँ, खुदा जीता रखे मेरी लाडली को।
3: आमीन। तो गोद वाले को विलायत संतु न ले जाएंगी।
4: दीवानी हुई हो, वहाँ मुई ठिठरन में गोश्त की बोटी को क्या लेके जाएगी। खैर से वो मेरे पास ही रहेगा,
3: और दूल्हा नवाब का अकेले जाना भी दुरुस्त नहीं, वो मुई फरिंगन फिर ही लग जाएगी।
4: अय है दीवानी हो गई हो नायाब, इस वक्त उस प्यारों पीटी मेम की मैयत काहे को पीटने बैठ गई।
3: अल्लाह जानता है बेगम, आप तो जबान कतरे लेती हैं, मुंह जली की बात तो सुनिए, आपका नमक खाया है तो क्या मैं।
4: ए बुआ, तो कुछ मुंह से फूटो तो।
3: नजम बिटिया और हलीमा का बस दो चार दिन का फर्क होगा, हफ्ते भर का भी हुआ तो कोई बात नहीं, बच्चे को पाक साफ दूध मिलेगा।
4: मगर अभी 6 महीने पड़े हैं, खैर से उस वक्त मुई को बुला लेना, इस वक्त तो मुर्दार को दफा करो।
3: जो हुक्म सरकार, मगर गांव में अच्छी देखभाल न हुई तो धान पान तो है ही अल्लाह मारी, यहाँ मेरे नजरों के सामने रहेगी तो मुई को अच्छी तरह खिलाऊंगी पिलाऊंगी, और फिर साहबजादे की जिद भी पूरी हो जाएगी।
4: जिद ही तो मैं पूरी नहीं करूंगी।
3: आपकी मर्जी, मगर इतना कह देती हूँ, साहबजादे भी जिद के पूरे हैं, बस कुछ दिन जाते हैं कि आप ही आप साहबजादे के दिल से नामराद उतर जाएगी, अपना काम भी निकलेगा और छुद्दा उन पर धरा जाएगा।
4: कभी सोचती हूँ नायाब, तुम न होती तो।
3: अल्लाह ने आपकी खिदमत की सआदत बख्शी, ये मेरे नसीब है बेगम साहब।
4: जरी खासदान आगे बढ़ो।
3: लीजिए, हुक्म हो तो आज हुरमा बीबी को जेवरात दिखा लाऊं, देखे क्या कुछ पसंद फरमाती हैं।
4: अच्छा दिखा लाओ।
3: अभी मतन, तुम्हारी बेगम कहाँ है। जाओ जरा अर्ज करो, नायाब खिदमत में हाजिर हुई है।
4: ओहो नायाब बहू, कहिए महल में सब कैसे हैं, अच्छे तो हैं।
3: जी हाँ, सब अल्लाह का फजल है। बैठिए बिटिया,
4: जरा नहाने जा रही हूँ, आप बैठिए, अम्मी आती ही होंगी।
3: लॉन्ड्री तो आपके पास हाजिर हुई थी।
4: क्या है।
3: ये जेवरात पसंद फरमाइए।
4: क्यों
3: रानी बिटिया, नवाब दुल्हन ने जेवरात भेजे हैं, इनमें से जो पसंद हो वो फरमा दीजिए, बाकी के लिए बम्बई ऑर्डर जाएगा।
4: मैं क्यों पसंद फरमाऊं।
3: छोटे सरकार की जिद है कि आपकी राय के बगैर कुछ ना खरीदा जाए।
4: कौन छोटे सरकार, छम्मन मियां।
3: जी जी हाँ।
4: ओहो, हलीमा बीवी के

0: मुझसे जेवरात क्यों पसंद करवा रहे हैं?
1: क्या फरमा रही है बिटिया, छोड़िए मजा। ये देखिए, ये विलायती जुगनू, क्या कहते हैं उसे, अल्लाह मारा, ये हाँ लाकेट।
0: इसमें मजाक की कौन सी बात है, छमन मियां भी दीवाने हैं, अपनी बीबी के लिए जेवर खरीद रहे हैं तो मेरी पसंद की क्या जरूरत
1: है? है रानी बिटिया, क्या फरमा रही हैं आप?
0: क्यों, क्या हलीमा उनकी दुल्हन नहीं है?
1: खुदा ना करे, हलीमा तो बांधी है।
0: बच्चा तो छमन मियां का है ना।
1: बच्चा? कैसा बच्चा?
0: फरखुंदा खाला कह रही थी कि
1: ए बस करो बिटिया, खुदा ना करे ये लौंडियां बांदियां इधर उधर का कूड़ा महल के माथे थोपना चाहती हैं।
0: बोलो बोलो, जब्बार की कसम खाकर कह दो।
1: ए बिटिया, आप भी गजब करती हैं, आखिर को नवाबजादे हैं, मगर वो लौंडे बांदी तो जी का बेलावा होती हैं, इन कमबख्तों से शादी ब्याह नहीं होता।
0: तो नवाबजादे शादियां किससे करते हैं? हम नवाबजादियों से।
1: और क्या बिटिया रानी,
0: हशमत भाई की तो एक बांदी थी, क्या नाम था, सनोबर?
1: ये वो रानी बिटिया, ये जेवर तो मुलाहजा फरमाइए।
0: एक बात पूछूं, सच सच बताओगी बाबू?
1: शौक से पूछिए, मगर वो
0: नवाबजादों के लिए तो बांदियां होती हैं और नवाबजादियों के लिए गुलाम।
1: हाय हाय बिटिया रानी, जरा तो शर्म कीजिए, ये आप क्या कह रहे हैं?
0: क्यों, अगर छमन मियां को जी बहलावा चाहिए तो उनकी दुल्हन को भी तो।
1: अम्मा जान नहीं, इसलिए मुझ बुढ़िया की गत बना रहे हैं, वो होती तो मजा न थी जो यूं मेरे मुंह पर जूतियां मारती। बेटी जान, ये गत भर की जबान लेकर किसी ऊंचे खानदान में कैसे निभेगी?
0: खुदा न करे जो मैं किसी ऊंचे खानदान को निभाने जाऊं, मैं ऊंचे खानदानों को गिलाजत का ढेर समझती हूँ।
1: बस बीवी, बहुत दुर्गत बना ली, बंदी चली।
0: आय हाय बुब्बू, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा।
1: जिनका सारी उम्र नमक खाया उनको तो कहा, तो मेरी सात पुश्तों को कहा।
2: ओहो, नायाब आई है, चली कहाँ, क्या हवा के घोड़े पे सवार आई हो? ये डब्बे कैसे हैं?
1: बिटिया रानी को जेवर दिखाने को भेजे हैं, खैर से बकरीद की चांद निकाह है, जेवर बंबई से बनकर आएंगे।
2: नायाब बूबू, तुम खानदान से अलग नहीं, तुमसे कौन सा भेद छुपा है, समझ में नहीं आता किस मुंह से कहूँ। जमाना बदल रहा है बुआ, आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते।
1: मैंने तो पहले भी कहा था बेगम, ये फरखुंदा बेगम की सोहबत रंग लाएगी।
2: ऐ है कैसर नवाब, कीड़ों भरा कबाब, लानत उसकी सूरत पर।
1: आप बहुत भोली हैं बेगम, नवाबों में हजार ऐब हुआ करते हैं, मगर खसम को छोड़ के दूसरा करना और वो भी बाल बच्चों वाली होकर, तौबा मेरी तौबा। बाबा ने पढ़ा लिखा के बेटी का सत्यानाश मार दिया।
2: ऐ खानदान ने उनका हुक्का पानी बंद करके क्या बिगाड़ लिया, जहाँ जाते हैं लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं, नाम है इज्जत है।
1: सुना है मियाँ की कमाई पूरी नहीं पड़ती तो खुद नौकरी करती हैं, मर्दों के कॉलेज में पढ़ाती हैं बेगम, नौच यू कोई शर्म हया बेच खाए तो क्या अर्ज करूँ बेगम से जाके?
2: यही कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी एक नहीं चलती।
3: अम्मा, हमारे सामने अपनी बदकारियों का इस ढिठाई से इकरार, एक तो मोरी में मुंह देते हो और।
4: मगर प्यारी अम्मी ने हलीमा को मुझे दिया, वो मेरी है, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वो मेरे बच्चे की माँ है।
3: मियाँ तुम बिल्कुल ही बच्चे हो।
4: कुद्दूस भाई, आप नहीं समझते।
3: इसमें समझने की क्या बात है साहबजादे,
4: हलीमा मर जाए।
3: मर जाने दो साली को, हम तुम्हें अपनी माँ रोक देंगे, वल्लाह क्या पटाखा है।
4: कमीने पाजी,
3: छमन होश में आओ, क्या पागल हो गया?
4: हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं किसी का खून कर दूंगा, चले जाइए यहाँ से। हलीमा, हलीमा
5: जी। सरकार।
4: कौन, सरवरी
5: जी?
4: तुम यहाँ क्या कर रही है?
5: आपके पाजामे में कमरबंद डाल रही हूँ, बटन कहाँ है, कुर्ते में लगा दो।
4: चल भाग यहाँ से और हलीमा को भेज।
5: मुझे बेगम साहब ने भेजा है, हम्माम में पानी तैयार है।
4: हलीमा कहाँ है?
5: ये लीजिए कुर्ता, नया तौलिया हमाम में लगा दिया है।
4: ओहो, हम पूछते हैं हलीमा कहाँ है और तू बकवास किए जा रही है।
5: अल्लाह, हमें क्या मालूम है, उधर कहीं बैठी होगी।
4: जा बुला ला। जाती है कि मार खाएगी, चल भाग।
5: हम नहीं जाते।
4: कहाँ है हलीमा बता।
5: उई अल्लाह, मेरी छोटी तो छोड़िए, हाय मैं मर गई, हाय मेरी मैया।
4: बता, नहीं बताएगी?
5: बताती हूँ।
4: बोल।
5: वो उधर शागिर्द पेशे में।
4: क्यों?
5: वो उसका जी अच्छा नहीं है। मियाँ खुदा का वास्ता, कहाँ जा रहे हैं, मर्दों के जाने का वक्त नहीं।
4: फरखुंदाबाजी, फरखुंदाबाजी, फरखुंदाबाजी।
5: अरे छमन मियाँ, क्या पैदल भागे।

0: साइकिल पर फरखुंदा बाजी वो मर रही है।
1: है कौन?
0: हलीमा, प्यारी अम्मी ने उसे काल कोठरी में फेंकवा दिया है। मैंने कहा डॉक्टर ने बुलवा दीजिए, तो बोलिंग भको मत।
1: ठहरो,
0: वो मर जाएगी सनूबर की तरह।
1: नहीं मियाँ, तुम्हारी हलीमा नहीं मरेगी, मैं चलती हूँ, जरा हॉस्पिटल एम्बुलेंस के लिए फोन कर दूँ।
2: बुबू, नायक बुबू, अस्पताल की लॉरी आई है।
3: अस्पताल की लॉरी? दीवानी हुई है ना मुराद?
2: अल्लाह कसम, चल के देख लो।
3: ये क्या किस्सा है नायक?
2: लॉरी के पीछे फरखुंदा नवाब की मोटर, मैंने अपनी आंखों से उतरते देखा, साथ में छमन मियाँ भी हैं।
3: तो ये बात है, फरखुंदा नवाब की ये हिम्मत।
4: लीजिए, वो आ गई।
1: तस्लीम मानी जान।
3: जियो, ये मुझे अस्पताल की लारी क्यों आई है?
1: हलीमा को लेने।
3: तुम्हारी अकल मारी गई है फरखुंदा नवाब?
1: इस वक्त बहस ना कीजिए, पहलोठी का बच्चा है। अगर
3: तुम्हारी बला से, तुम कौन होती हो महल के मामलात में दखल देने वाली?
1: देखिए मुमानी जान, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, अगर केस बिगड़ गया तो याद है सनोबर का किस्सा।
3: हद से न बढ़ो फरखुंदा।
1: मुझे मजबूर ना कीजिए मुमानी जान।
3: क्या मतलब?
1: मतलब ये कि फिर मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा।
4: पुलिस?
2: इंशाल्लाह।
3: मामू को पुलिस चढ़ा के लाओगी? गारत हो मेरे सामने से।
1: छमन, स्ट्रेचर मंगवाओ।
0: नहीं, मैं उठा लूंगा।
1: संभाल के इस चादर में लपेट लो।
5: आप क्या कर रहे हैं छोटे सरकार? अल्लाह का वास्ता, मुझे मर जाने दीजिए।
0: चुप रहो बेवकूफ।
1: कमबख्त लालटेन भी तो बुझी जाती है। ओफो,
0: कोई बात नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है।
6: ये क्या हो रहा है?
1: आदा मामू जान, हलीमा को अस्पताल ले जा रहे हैं।
6: हमसे पूछे बगैर?
0: ये मर जाएगी अब्बा हुजूर।
6: मर जाने दो
0: अब्बा हुजूर।
6: इसे पलंग पर डालो और हमारे साथ आओ।
0: नहीं,
6: तुम्हारी ये हिम्मत? एक जलील बांदी के लिए हमसे गुस्ताखी कर रहे हो बेशर्म?
0: ये बांदी नहीं, मेरी बीवी है।
6: क्या बकते हो मर्दूद? हम तुम्हें आग कर देंगे, कौड़ी कौड़ी को मोहताज कर देंगे।
0: मुझे आपकी दौलत से एक पाई भी नहीं चाहिए।
6: तुम्हारे इतने दिमाग?
4: होश में आओ बेटे, मैं मुझे डॉक्टर नहीं बुलवा दूंगी।
0: नहीं प्यारी अम्मी, अब ये महल मेरे और मेरी बीवी के लिए जेल से बदतर है।
4: अरे कहाँ जा रहा है छम्मन मेरे लाल, इस बला को लेके कहाँ जाएगा बेटे?
0: दुनिया बहुत बड़ी है प्यारी अम्मी, सभी तो इस महल में नहीं रहते। मैं भी वहां जा रहा हूँ जहाँ और करोड़ों रहते।
4: ना जाओ मेरे लाल।
0: खुदा।
4: ना जाओ मेरे लाल छम्मन।
6: जाने दो बेगम, साहबजादे नाक के बल चलकर वापस आएंगे। जरा दो चार थपेड़े खा लेने दो, मिजाज दुरुस्त हो जाएगी।
4: वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा, मैं उसे जानती हूँ। ना मुराद बांदी ने मेरे लाल पर जादू कर दिया।
2: नहीं बुबू, कैसे हैं छमन मियाँ के साहबजादे, कैसे हैं बताओ ना।
3: अरे मेरे कान नखा, मुझे छाती में सांस तो समाती नहीं, दम तो लेने दे रही।
4: अरे अब दम बाद में लेना, पहले बताओ बच्चा कैसा है?
3: अरे बेगम, बस चांद का टुकड़ा है, वो अपने दादा की सूरत।
4: घर बार कैसा है?
3: अरे बेगम कुर्बान जाऊं, ना घर ना बार, मुई तिल बराबर कोठरी है, बस अल्लाह रखे आपकी मुसहरी जितनी होगी कि उससे कुछ बड़ी। पर बेगम क्या बताऊं, मेरा तो देखकर कलेजा फट गया। मैं गई तो हलीमा अंगीठी पर कुछ पका रही थी और छमन ने वहां पलंग पर लेटे थे, एक हाथ में किताब थी और दूसरे से बच्चे का झूला हिला रहे थे।
4: या अल्लाह, खुदा समझे उस नामुराद बांदी से।
7: नाट्य तरंग में अभी आप इसमत चुगताई का लिखा नाटक बांदी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे मुहाफिज हैदर, डॉली रिजवी, सैयद अहमद रिजवी, क्यू एन कश्मीरी, मुमताज बशीर, सुरैया डागर, सिकंदर जहां, रेखा गांधी, शमीम बानू, प्रकाश अरोड़ा, शाहगुल दुर्रानी और हिमांगनी रानडे। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तो आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग। सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो इतने सारे संगीतकारों के साथ आपने काम किया है, बड़े महान लोग, एक बाल गायिका के रूप में ये अनुभव आपका कैसा रहा, क्योंकि आप लगभग छोटी ही थी तब?
1: हाँ।
0: और किसके साथ ज्यादा कंफर्ट जोन में रही?
1: नहीं मंदाकिनी जी, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं किन दिग्गजों के सामने खड़ी हूँ
0: जी,
1: मैं किन दिग्गजों के साथ काम कर रही हूँ, ये कौन है जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। जैसे मदन मोहन जी के बारे में, उनके गुस्से के बारे में बहुत सुना था
0: जी, बिल्कुल।
1: अब उनके पास गई वो कोशिश फिल्म, उसमें दो ही गाने थे मंदाकिनी जी, एक रफी साहब का था और एक मेरा। तो मैं जब गई उनके पेडर रोड के फ्लैट में, बहुत बड़ा हॉल था उनका और सारे कोरस सिंगर्स, मैं उन्हें सहगायक कहती हूँ, कोरस सिंगर्स नहीं कहती, वो बैठे थे, कुछ म्यूजिशियंस भी थे, वो टेनिस खेलने गए थे और हम सब बैठे हैं। थोड़ी देर में आए, आते ही बोले, सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, वो बच्चा तो मतलब मैं इतनी छोटी सी थी तब। तो ये है, वो जो मैसेंजर्स हमारे होते थे जो हमको रिकॉर्डिंग

0: के मैसेज दिया
1: जी
0: करते थे।
1: जी
0: जागीरदार जी बोले, साहब जी ये इतनी छोटी, आ जा बेटा गाना कौन लिखेगा, तो मौसी लिखती थी।
1: अच्छा
0: जैसे उन्होंने गाना शुरू किया, बोला देखो अब मैं सुनाता हूँ आराम से, हाँ डरने का नहीं। अब उन्होंने शुरू किया, अगर मैं अपनी जुबानी कहूँ तो मेरा पिकअप बहुत फास्ट है मंदाकिनी जी,
1: जी
0: बहुत फास्ट। तो जैसे ही मदन मोहन जी ने गाना गाया तो मैं रुकी, क्योंकि ये तमीज सिखाई गई थी कि जब तक वो नहीं कहेंगे तुम गाओ, तुम्हें याद भी हो गया
1: अच्छा
0: तो मुझे देखा, बोले एक बार और गाऊं, कहा नहीं मैं गाऊं, तो बोले गाओगी कहां। तो मैंने शुरू किया, वो गाना था कुछ कोशिश फिल्म का गाना था, मुझे हमसे है वतन हमारा और वतन से हम, देश है धर्म हमारा देश है करम, तररम परम परम पतररम, ये गाना था।
1: जी जी
0: तो मैंने कहा मैं गाऊं, तो बोले गाओ। मैंने शुरू किया, उन्होंने बाजा बंद किया, अब सब डर गए कि भाई अब कुछ तो होगा। बोले जागीरदार सबसे बड़ा चॉकलेट लेके आए इस बच्ची के लिए। और मुझे देखा, तुम्हारा पिकअप तो बहुत अच्छा है बेटा।
1: बिल्कुल
0: तो मौसिन को पूछा, अब सीखती है? मौसिन ने कहा हाँ भी थोड़ा सीखने लगी है। अरे सिखाइए इसे, ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, इतना भी काफी था उनके
1: हाँ
0: लिए, इतना कहना ही
1: बहुत
0: काफी था।
1: बड़ी बात।
0: ये मुझे लगता है मेरी जिंदगी के कॉम्प्लीमेंट्स में इसे सुनहरे अक्षरों से मैं लिखूं तो भी कम
1: कम है जी
0: है ना।
1: जी जी
0: उनके साथ तो ये था मेरा, नौशाद साहब, उनके बंगले पे बुलाया उन्होंने कार्टर रोड, और मैं गई। उस वक्त मेरे उस्ताद ताज अहमद खान साहब, जिनसे मैंने डैडी के बाद तकरीबन 15-16 साल मैंने उनसे
1: सीखा
0: तालीम जी, और उनको भेजा मेरे पास कल्याण जी अंकल ने, वो भी एक अलग कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। तो अबू साहब, मैं उन्हें अबू साहब कहती थी,
1: जी
0: तो उन्होंने कहा कि नौशाद साहब के पास जब जा रही हो तो मैं भी चलूंगा, क्योंकि मैं उन्हें वो चीजें सुनाना चाहता हूं जो मैंने तुम्हें सिखाया है।
1: जी
0: तो हम गए, और वो भी टेनिस खेलने गए थे, वो दिलीप
1: अच्छा
0: साहब के साथ खेलते थे
1: हाँ हाँ
0: टेनिस।
1: हाँ
0: शाम को हम पहुंचे, उन्होंने, उनका म्यूजिक रूम था बंगले पे, बैठे बैठे आए, माफ कीजिए मुझे देर हो गई, चेंज करके फ्रेश होके आए। तो अबू साहब ने, हाँ हाँ खान साहब बताइए, वो तो जानते थे उन्हें, पर इस बच्ची को कुछ सिखाया है आपको? हाँ हाँ हाँ प्लीज सुनाइए सुनाइए। तो मैंने कुछ गजलें उनको सुनाई,
1: जी
0: और सुनकर मंदाकिनी जी तकरीबन 6:30 बजे मैंने शुरू किया, एक गजल सुनाई, बोले कुछ और सुनाओ बेटा, फिर और, करते करते 10 बज गए,
1: रात की।
0: आप यकीन नहीं करोगे, और बस बच्चे को कुछ खिलाओ, बच्चा और कुछ सुनाओ। और पता उन्होंने कितनी बड़ी बात वो बोले,
1: जी
0: मंदाकिनी जी बोले, बेटा काफी देर हो गई है, मैं तुम्हें थका रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, वो इसीलिए कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसा गाती हो, और मैंने जिस गाने के लिए तुम्हें बुलाया है उसमें एक दो ही लाइंस हैं, तो क्या तुम गाना पसंद करोगी?
1: अरे
0: तो
1: जी
0: अबू साहब ने कहा कि वो सुनहरा संसार आई ना, दो फिल्में आई थी उनकी उस वक्त, बिल्कुल आखिर आखिर में सुनहरा संसार का, उसमें एक गाना था, मैं बताता, वो भी रफी साहब के साथ, बाबुल के घर के बाहर पी की गली आती है, देवर भाभी में दर टली जाती, फिर था हम जो तुझे छेड़े ओ भाभी तो क्या है खराबी,
1: अरे
0: इतना ही
1: वाह
0: था बस।
1: जी
0: तो अबू साहब ने कहा, नौशाद जी आप क्या बात कर रहे हैं, आपने हमारी बच्ची को बुलाया, जहे नसीब, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये इस काबिल है कि आपके सामने बैठकर आपको कुछ सुना सके। बहुत, उसके बाद उत्तम भैया उनके असिस्टेंट, अरे
1: जी जी
0: तो उत्तम भैया ने बहुत, वो तो हमेशा ही हेल्प करते थे। तो बस फिर वो गाना मैंने गाया, फिर एक दो डबिंग्स के लिए भी बुलाया उन्होंने।
1: आपकी पसंद का ये गीत

0: सुषमा जी, आपकी बातें हम सुन रहे हैं और हमें लगता है कि आपने अपनी एक अलग स्टाइल बनाई। तो अलग स्टाइल बनाने का जो विचार है, ये आपके मन में कैसे आया? हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं।
1: एक बात आपको आज बताना चाहूंगी।
0: जी जी।
1: मैं अपने श्रोताओं को
0: जी
1: एक गाना मैं डब कर रही थी जिसे लता जी गाने वाली थी, ठीक है? और सुनिए, हेमा मालिनी जी पर वो फिल्माया जाने वाला था। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो अंदर तो मेरी मौसी और सब थे, तो जो फिल्म सेंटर के रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे कौशिक बाबा, नौशाद साहब ने उनको पूछा, कौशिक बाबा कैसा गा रही है बच्ची? क्या मैं बंदा के निजी 12 साल की थी? तो कौशिक बाबा ने झट से कहा कि लता वाली बात नहीं है। तो अच्छा। पता है क्या क्या कहा नौशाद साहब ने?
0: हाँ।
1: बोले, मुझे लता नहीं चाहिए, मुझे सुषमा चाहिए।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: इसलिए मैं उसे उसके तरीके से गाने दे रहा हूं।
0: जी जी जी जी जी।
1: तब मुझे ये एहसास हुआ मंदाकिनी जी, मैंने इन चीजों में बहुत, मतलब कैसे कहूं, मैं वो पहले से ही बहुत जहनी थी मैं। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि इसका मतलब मैं अपनी एक स्टाइल बना सकती हूं।
0: बिल्कुल।
1: मतलब मैं अपनी स्टाइल बनाऊं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो उस वक्त से ही वो दिमाग मेरा चलने लगा।
0: और इतनी छोटी उम्र में आपने इस बात को पकड़ लिया।
1: आप अगर सुनो, देखो मंदाकिनी जी, मैं आपको एक छोटा सा एक मिसाल देती हूँ। है ना बोलो पापा को मम्मी से प्यार है, पापा मम्मी मिलते हैं चुपके चुपके हंसते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं, बातें करते रहते हैं। वो ही फॉलो किया मैंने, दिल तुम मेरा तो उस पे बात पे आ रही पर वही
0: जी।
1: तो वो बड़ी होती गई, वो जहन में था कि मुझे अपनी एक स्टाइल बनानी।
0: जी बिल्कुल,
1: वो था बस।
0: तो, और उसे पर्दे पर देखना भी उतना ही अच्छा लगता था जब अभिनेत्री उसको उसी तरीके से अपने होठों को बनाकर गाती है, तो बड़ा मजेदार वो सीन लगता है।
1: और जहां तक प्रभावित होने का सवाल है मंदाकिनी जी, आपने जो सवाल किया, प्रभावित तो मैं एक ही इंसान से जिंदगी में हुई, एक इंसान बतौर एक इंसान और बतौर एक म्यूजिक कंपोजर, और वो है वन एंड ओनली मिस्टर आरडी बर्मन
0: जी,
1: मेरे पंचमदा
0: जी।
1: इतनी प्रभावित कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी में कौन सी जगह देती हूं।
0: जी,
1: तो
0: होता है जब एक कलाकार दूसरे कलाकार के साथ संगीत विधा को जीता है, तो आप कहीं ना कहीं इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आप उनमें खो जाते हैं। इस तरह की
1: उन्होंने मुझे परफ्यूम कैसे लगाना वो भी सिखाया। इतना मतलब हमारा एक बहुत ही अनूठा रिश्ता था,
0: बॉन्डिंग
1: बहुत
0: थी।
1: बहुत
0: हाँ।
1: बहुत अलग।
0: तो क्यों ना पंचम दा का ही गीत सुन लिया जाए, जिसमें आपने अपनी आवाज दी।
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई।
0: थोड़ा सा गाएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, आज सामने सुनने का मौका मिला है हमें भी।
1: कोशिश करूंगी
0: जी,
1: गला बंद है पर कोशिश करूंगी।
0: जी बिल्कुल।
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है

0: फैला देता है कि उस वक्त वो इंसान जो उस सिचुएशन में रहता है ना, जैसे मैं
1: जी,
0: मुझे खुद को भी इस बात, अगर आप मुझे आज पूछेंगी कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान क्या हुआ क्या नहीं, हालांकि ये गाना मेरे लिए नहीं था मंदाकिनी जी,
1: अच्छा
0: इस गाने को लता जी गाने वाली थी
1: अच्छा
0: जी, मुझे तो वो पंचमदा तो कोशिश वो उसमें लगे ही रहते थे कि कहां से इसको मैं कौन सा एक मौका दूं, एक लाइन ही दे दूं, एक डायलॉग ही दे दूं, तो वो तो रुके हुए थे कि कब मैं, क्योंकि बर्मन चाचा बोल चुके थे कि मैं तुझे नहीं दे पाया
1: जी
0: कोई भी गाना अच्छा, पर तेरा दादा तुझे तेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गाना गवाएगा ना पंचम, गवाएगा ना पंचम।
1: अरे
0: तो उन्होंने फोन करके ये कह के बुलाया कि ये गाना डबिंग के लिए प्रॉक्सी, तो अगर तुम गा गई तो भाई रख सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। तो ये दो पार्ट्स में है गाना, आपको भी याद होगा, एक किशोर काका का सोलो है, वो सोलो पार्ट गाकर वहीं फिल्म सेंटर में किशोर काका आराम कर रहे थे, दो शिफ्ट्स में काम होता था तब, 9 से 1 और फिर 3 से आगे
1: अच्छा
0: और फिर ओवर टाइम, तो वहीं सोए थे वो। उन्हीं का गाया हुआ मुझे पोर्शन पंचमदा ने बोला सुनो, लास्ट अंतरा लिखो और देखो, लर्न द सॉन्ग। तब मुझे भूपी अंकल और उत्तम भैया ने ही मदद मेरी की
1: जी
0: बहुत ज्यादा,
1: जी
0: गाना सीखा मैंने, फिर रिहर्सल हुई, जब माइक पे गए, हालांकि किशोर काका काफी कॉन्फिडेंट थे, वो
1: कि आप गा
0: गाएगी,
1: लेंगी।
0: हाँ बोले वो गाएगी, गाएगी पंचम, वो गाएगी गाएगी, छोड़ यार डब वब का छोड़, वो ही गाएगी। तो वो बोले देखता हूँ, डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी,
1: जी
0: जब वो आए उन्होंने सुना, फिर उन्होंने अप्रूवल दिया कि नहीं डब करने की जरूरत नहीं है, ये आवाज, ये बच्चा इतना अच्छा गा रहा है और इसका जो इसकी आवाज जो है वो मेरे फिल्म के कैरेक्टर को बिल्कुल
1: सूट
0: सूट
1: करती है।
0: इस करके ये गाना
1: क्या
0: मुझे
1: बात
0: मिला।
1: है। तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का। बताइए,
0: प्लीज
1: तेरा
0: प्लीज,
1: मुझसे है पहले का
0: बिल्कुल
1: नाता कोई,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आप ही का गाया हुआ सुन
0: जी
1: लेंगे।
0: जी

0: था मेरी जिंदगी का, मैं कैसे कहूँ, मेरी जिंदगी की पहचान,
1: जी जी
0: ये गाना बन गया
1: जी बिल्कुल,
0: तेरा मुझसे है पहले का
1: नाता
0: नाता
1: कोई।
0: कोविड के वक्त कितने लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, फोन, जब उनके घर में कोई बीमार हो, कितना ऐसा हुआ है कि ये हमारा फेवरेट गाना
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: एक कोई बेटा अपनी माँ के लिए गा रहा है, कोई पत्नी अपने पति, ये मतलब, और मुझे वीडियोस बना बना के भेजे हैं
1: जी
0: लोगों ने,
1: जी जी
0: किसी किसी के थ्रू। लेकिन मंदाकिनी जी, इस फिल्म का एक और गाना था, ओ मेरे बेटे सुन, उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए, पता नहीं क्यों गाते थे, कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि

0: वाला तो वो ही रखवाला है, उसी को बुलाना तू आ जा। हाँ, ये जो वो बोलते थे ना मंदा, मैं डायनामिक्स की जहां बात कर रही हूं,
1: जी जी
0: देखिए
1: जी
0: मैं जो बच्चे सुन रहे हैं अगर उनके लिए ये है सिर्फ, यू नो कि तारा रा रा रा, ये हुआ एक खुले गले का, फिर कहा ना भुलाना तो ये रा रा रा, और सॉफ्ट उसी को बुलाना तो आ जा
1: क्या बात है, क्या
0: तो
1: बात है,
0: ये मैंने
1: ये
0: उनसे
1: आकार का
0: सीखा।
1: जी, ये पंचम धाम में ही ये गुण
0: ये
1: थे
0: उतार चढ़ाव
1: जी
0: डायनामिक समझ जिसे
1: जी
0: कहते,
1: जी जी
0: कहां कितना आपको जोर देना
1: देना
0: है,
1: है,
0: कहां आपको कितना सॉफ्ट करना है,
1: वाह
0: कहां आपको कितना फेड इन फेड आउट करना है,
1: वाह
0: ये वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ के पता नहीं यही अंतरा गाते थे।
1: जी जी जी मतलब आप कितनी भाग्यशाली रही कि आपको इतने बड़े लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला,
0: बहुत
1: उस
0: बहुत
1: छत्र छाया में आपने
0: बिल्कुल,
1: सुषमा श्रेष्ठ का जीवन जिया है,
0: ये मेरा
1: जो
0: भाग्य ही है।
1: नसीब नहीं
0: हाँ
1: मिलता है, अच्छे
0: बिल्कुल,
1: अच्छों को नहीं मिला है।
0: नहीं
1: अभी
0: मिल,
1: भी ऐसी बाल गायिकाएं नहीं है
0: ना ना
1: जिनको
0: ना
1: हम उंगलियों पे गिने या उनका नाम ले
0: ना
1: सके,
0: ना
1: सुषमा श्रेष्ठ के अलावा।

0: तो इसके बाद फिर मैंने देखिए ना कैसे दिग्गजों के साथ काम किया। लता जी, उनके साथ पहले तो मैंने गाया था फिल्म, एक जॉय बांग्लादेश आई थी, आईएस जौहर साहब की फिल्म
1: हाँ
0: थी,
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना,
1: हाँ जी
0: बांग्लादेश वॉर के
1: जी
0: ऊपर वो
1: जी
0: था। वो पहली बार मैं उनसे मिली थी। हाँ, उसके बाद मैंने गाया उनके साथ यादों की बारात।
1: बारात, वाह।
0: ये गाना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत ही, मतलब मैं समझती हूँ, एक और मेरे दिल के करीब का गाना
1: बिल्कुल, ये हमारे दिल के
0: है
1: भी
0: ना।
1: करीब उतना ही।
0: और इसका ऐसा है ना मंदाकिनी जी, वो तीन तीन बच्चे बताए हैं ना, सबसे छोटा जो बच्चा वो आमिर खान
1: हाँ, बिल्कुल जी।
0: है। तो मुझे क्या मालूम कि आगे चल के ये इतना बड़ा स्टार बनेगा और मैं इसके लिए मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू
1: जी
0: गाऊंगी।
1: बिल्कुल,
0: तो वो गाना मैंने, और ये गाना मेरे साथ गाया पद्मिनी, पद्मिनी
1: कोल्हापुरी
0: कोल्हापुरी।
1: ने जी।
0: लेकिन इसके क्या होता, वहां प्रोडक्शन कंट्रोलर्स आते थे जो गाने के पूरी डिटेल्स, मतलब लिरिक्स के साथ शूटिंग के लिए, वो नागरा क्या बोलते हैं ना, नागरा वो लेकर
1: जी
0: आते
1: जी
0: थे।
1: जी जी
0: तो वहां एक गलती प्रोडक्शन वालों की ये हुई कि उन्होंने जैकेट, मतलब उस गाने में मेरा नाम नहीं दिया,
1: अच्छा,
0: जिसको लेकर नासिर साहब ने खुद मुझे फोन किया, मंदाकिनी जी
1: नासिर हुसैन साहब
0: जी,
1: ने।
0: कि मैं बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, पर अब
1: अरे
0: सब कुछ चला गया है, अब वो टाइटल्स सब कुछ हो गया, अब
1: हाँ
0: क्या।
1: हाँ
0: नहीं, मैंने
1: हाँ
0: कहा अंकल आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक तो मैं आपके प्रोडक्शन में गा रही हूं और मैं लता जी के साथ गा रही हूं,
1: सबसे बड़ी
0: वही
1: बात
0: मेरे लिए काफी है।
1: जी।
0: इतनी दुआएं दी उन्होंने, बोला मैं तुझे फिर गवाऊंगा, नहीं मैं तुझे गवाता रहूंगा। फिर ये तो यादों की बारात, वो गाना बजाए,
1: यादों की
0: यादों
1: बारात
0: की
1: निकली
0: बारात
1: है अब,
0: निकली है
1: पर
0: आज।
1: आपको गाना
0: हाँ
1: होगा, शर्त यही है।
0: प्लीज मैं कोशिश करूंगी।

0: सपनों की शहनाई बीते दिन। देखिए मैं जो कह रही हूं ना, फेड इन फेड आउट, पुश बैक पुश
1: जी
0: बैक,
1: जी
0: वो इनकी ये स्टाइल मैंने पंचमदास से
1: जी
0: सीखी।
1: जी
0: डा डा रा रा रा रा रा रा, आप समझी?
1: वो खुद भी ऐसे ही
0: डा
1: गा
0: रा,
1: देते
0: हाँ
1: हैं
0: बिल्कुल,
1: जी।
0: डा रा।

0: बात कर रहे हैं हम आपके बचपन की
1: जी।
0: और अब सुषमा श्रेष्ठ के उस आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां हम कहना चाहेंगे कि कुछ गाने ऐसे थे जैसे कि क्या हुआ तेरा वादा,
1: ओहो,
0: तेरी है जमी तेरा आसमान, और सबसे बड़ी बात एन चंद्रा की फिल्म
1: धर्म करम भी था,
0: धर्म
1: एक दिन
0: करम
1: बिक जाएगा माटी के मोल, मुकेश अंकल के
0: बिल्कुल,
1: साथ।
0: और एन चंद्रा की फिल्म अंकुश का इतनी
1: ओ,
0: शक्ति
1: हो,
0: हमें देना दादा,
1: जी जी
0: जिसमें
1: जी
0: आपने पुष्पा पागधरी के साथ
1: जी
0: गीत
1: जी
0: गाया है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो ये गीत बड़ा भावनात्मक गीत था उस उम्र
1: बहुत
0: में,
1: बहुत।
0: वो भावनात्मक दृष्टिकोण कैसे आपके भीतर आया, इस गीत को गाना आसान नहीं था।
1: मंदाकिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही वैसी थी। देखिए ना, मैंने पहला गाना जो उठाया गाने के लिए बचपन में भी, वो था रोतड़ू गाना, कांटों की दुनिया है तुझसे। फिर मैं गाती थी एक तू ना, ये मेरा मेरा चॉइस रहा
0: जी
1: है।
0: जी
1: सिर्फ मैं ना वर्ड्स का गड़बड़ करती थी, तो एक तू ना मिला को मैं चूना मिला बोलती
0: अच्छा
1: और डैडी बहुत हंसते थे और बार बार गवाते थे और करेक्ट नहीं करते थे कि उसको चूना मिला बोलने दो। तो चॉइस मेरा यही रहा है। ये अलग बात है कि आगे चल के मुझे अलग स्टाइल के गाने गवाए गए, वो एक अपनी कहानी है, लेकिन चॉइस तो मेरा यही रहा है।

0: वो जो एक मैं बोलूंगी कि भाव से गाना जिसे कहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग जिसे हम कहते हैं, हाँ, माफी चाहूंगी सारे दिग्गजों से, मैं माफी चाहूंगी,
1: जी
0: लेकिन प्लेबैक सिंगिंग एक बहुत अलग, एक बहुत ही अलग गेम है।
1: विधा है।
0: बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कोई भी इसे ठीक तरह से विस्तार में समझा पाएगा कि ये क्या है, लेकिन प्लेबैक सिंगर्स जो है ना, वो खास एक ढांचे में वो उनको ढाल के भेजता है, ऐसा मेरा मानना है। तो वो मेरे में, मुझे लगता है बचपन से था
1: जी
0: प्लेबैक सिंगिंग। तो ये सब गाने भी जब मैंने गाए, जैसे एक दिन बिक जाएगा माटी के, मैं ठीक समझ जाती थी कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो गाना भी पंचमदा ने जबरदस्ती मुझे गवाया है। राज साहब की फिल्म बन रही है तो आर के बैनर में इसका एक गाना होना ही चाहिए। राज साहब प्लीज, आप तो आप ही की फिल्म है, एक एक सिचुएशन बनाओ। फिर तेरा मुझसे है पहले का, उनको सुनाया, देखिए क्या गाती है, क्या गाती है, कर दो ना कर दो ना, अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे करके उन्होंने वो सिचुएशन बनाई, मुकेश अंकल के साथ मुझे गवाया। तो मुझे ठीक मालूम था कि उनको वो तरम पम कैसे चाहिए, तरम पम। उसमें राज साहब ने कहा भी मुकेश अंकल को,
1: जी
0: ए मुकेश चंद, वो बच्चा बोल रहा है वैसा तरम पम नहीं आ रहा है तुम्हारा।
1: अरे
0: पर उनके उनका बड़प्पन
1: हाँ
0: देखिए, ये
1: हाँ
0: पहले भी एक बार मैं मुकेश झट से बताती हूँ,
1: हाँ
0: मुकेश अंकल के साथ मैंने जो पहला गाना गाया वो बाप्पी दा की पहली फिल्म थी,
1: जी
0: नन्हा शिकारी।
1: अच्छा।
0: हाँ, ये मुखर्जी ब्रदर्स यानी काजोल के चाचा
1: जी
0: पिताजी, काजोल के पिताजी उसके डायरेक्टर थे,
1: जी
0: तो वो बापीदा की पहली फिल्म थी। और उसमें जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो बापीदा की मम्मी ने मुकेश अंकल से कहा कि तुम ना ऊपर के सुर को, क्योंकि उसका अंतरा था, चाहे मझधार में नैया हो, वो उसको तुम ज्यादा मत खेचो, तोड़ दो नहीं तो तुम बेसुरा हो जाता है, ऐसे बोली वो। अब सब साइलेंस कि अब तो गदा पड़ी, लेकिन मुकेश अंकल की बढ़ाई देखिए, बड़प्पन उनका देखिए, वो बाजा बजा कर गाते थे, हाँ,
1: हाँ
0: इवन
1: हाँ
0: रिकॉर्डिंग्स में,
1: हाँ
0: वो हंसने लगे और बोले ठीक कह रही हैं आप,
1: अरे
0: बड़प्पन देखिए
1: क्या
0: उसका।
1: बात है,
0: वहां मैंने ये एक और, मैं
1: सबक
0: बहुत नोट
1: सीखा।
0: करती थी ये
1: जी
0: सब
1: जी
0: बातें,
1: ये नम्रता
0: कि ये
1: विनम्रता
0: नम्रता होना, अपनी कमजोरी को
1: समझते
0: समझना,
1: हुए,
0: जानना और एक्सेप्ट करना, उसके लिए भी बहुत हिम्मत लगती है।
1: और एक बच्चे के सामने जब कहा जा
0: बिल्कुल
1: रहा हो उसको
0: बिल्कुल,
1: अप्रिशिएट करते हुए,
0: और वही
1: तो
0: बात इस गाने में भी हुई
1: जी
0: कि मुकेश चंद वो तरम पम बच्चे की तरह तो हंसने लगे, बोले अरे बच्चा तू तो हमेशा फंसाती है मुझे,
1: अरे
0: राज बच्चा तरम पम बोलेगा और मैं बोलूं उसमें फर्क तो होगा, अरे फिर भी मुकेश चंद देख वो कह, अच्छा भाभी बता बेटा कैसे बोल रही है, तरम पम तरम पम, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा राज, उसी से बोलो, उसी से बुलवाओ,
1: क्या
0: नहीं
1: बात है।
0: तुम्हारे अंतरे में तुम बोलोगे, चलो ठीक है मुकेश चंद बोल दो जैसे बोल रहे हो। तो ये जो मैंने सब देखा, ये माहौल, एक वो जो कॉमरेडशिप, एक एक्सेप्टेंस
1: बिल्कुल।
0: कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूं, जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा, जो मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं करूंगा,
1: बिल्कुल, इसको इसको
0: है ना,
1: स्वीकार कर
0: ये
1: लेना।
0: ईमानदारी
1: जी
0: है ना,
1: जी जी
0: ये सब मैंने सीखा मंदाकिनी जी।
1: जी जी
0: वो अगर चाहे तो थोड़ा सा गाना प्लीज बजा दीजिए, कि
1: जी
0: क्यों, मैं समझती हूँ हर हर कलाकार के लिए ये वो है,
1: फिल्म धर्म कर्म का,
0: वो जो अंतरा है कि
1: हाँ
0: ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, तेरे पीछे मतवाले सब सोचे।

0: एक दिन बिक
1: क्या
0: जाएगा,
1: बात है,
0: एक दिन बिक जाएगा
1: माटी
0: माटी
1: के
0: के मोल, ये
1: मूल।
0: हर कलाकार के लिए है। अगर आप बजा सकें तो प्लीज मेरे लिए ये
1: बिल्कुल
0: गाना
1: बिल्कुल, ये
0: बजाइए।
1: गाना हम बजाएंगे और हमारे
0: जी
1: श्रोता सुनना भी चाहेंगे, तो चलिए सुनते हैं
0: जी
1: ये गीत।

0: इस गीत को सुनने के बाद तो देखिए रोंगटे खड़े से हो गए हैं, और हर वक्त जब इस गीत को हम सुनते हैं तो वाकई जीवन की सच्चाई हमें समझ आती है कि किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे एन चंद्रा की फिल्म अंकुश की, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये आपका शायद अंतिम गाना था।
1: सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ मेरा अंतिम गीत था।
0: जी जी।
1: और क्या होता था मंदाकिनी जी, मैं अगर थोड़ा सा जल्दी से आपको बताऊं,
0: जी
1: जैसे मैंने क्या हुआ तेरा वादा रफी साहब के साथ गाया था, तो उसमें तो मैंने शिवांगी कोल्हापुरे,
0: जी शिवांगी
1: जो शक्ति कपूर जी की बीवी,
0: बीवी
1: और श्रद्धा कपूर
0: की बहन है,
1: और श्रद्धा कपूर की
0: मम्मी
1: माँ,
0: है, हाँ।
1: तो उसके साथ गाया था ये गाना। तो वहां भी जब वो अंतरे में भूलेगा दिल, अब मैं ये किस्मत की बात जहां करती हूँ, लेकिन उस गाने से मेरी पहचान बनी।
0: जी।
1: मैं जहां जाती हूँ मुझे वो गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं लोग, वो गाना मेरा है नहीं वैसे, लेकिन इट्स हम डुएट ही बोलेंगे उसे, है ना। तो भाग्य ने मेरा बहुत साथ दिया मंदाकिनी,
0: और उस गाने के बगैर पूर्णिमा जी अधूरी लगती हैं।
1: और नासिर साहब, नासिर अंकल ने कहा, मैं तुझे बोला था ना बेटा, मैं बार बार बुलाऊंगा तुझे, मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, फोन करके माफी। क्या मतलब वो कौन थे वो,
0: जी,
1: मैं
0: जी
1: क्या थी उनके
0: जी
1: आगे, और क्या हूं,
0: बिल्कुल
1: इज नासिर हुसैन। और मेरी मेरी किस्मत देखिए, एक के नडियाड वाला फिल्म्स, आगले लग जा, तेरा मुझसे है पहले, आज मैंने उनके पोते के लिए, वो हम पूर्णिमा पर जब आएंगे तो वो गाना जरूर बजवाऊंगी आपसे, साजिद के साथ उनके पोते के साथ काम
0: जी
1: किया,
0: जी
1: इतनी मतलब
0: बड़ी बात है, और
1: मैं
0: ताउम्र
1: हाँ।
0: याद रहने वाली बात
1: और
0: है
1: ये
0: वो।
1: आखिरी गीत, इतनी शक्ति हमने सोचा ही नहीं था मंदाकिनी जी। कुलदीप सिंह जी ने ऑफ कोर्स गाना कंपोज किया,
0: बिल्कुल।
1: मैं उनको पापा जी कहती हूँ, और लिखा है उसको अभिलाष जी ने। फिर बहुत बदकिस्मत, इतने बेहतरीन राइटर लिरिसिस्ट एन चंद्रा जी की शायद पहली फिल्म, पता है मंदाकिनी जी, मैं अगर मैं बोलूं आपको, मैं बहुतों के लिए बहुत लकी हूं। देखिए मैंने सबकी जो करियर्स की जो शुरुआत हुई है, काफी, जैसे रमेश सिप्पी जी, सलीम जावेद जी, फिर एन चंद्रा जी,
0: उनके शुरुआती दौर में।
1: काजोल और रानी मुखर्जी, तो हाँ मैं लकी हूँ सबके लिए शायद। यस यस
0: इस वक्त
1: यस।
0: आप हमारे लिए लकी हैं।
1: तो ये हमने सोचा ही नहीं था
0: जी जी
1: कि ये गाना एक दिन इस देश, मैं बोलती हूँ देश विदेश में तो पॉपुलर हुआ, पर इस देश का एक नेशनल एंथम बन जाएगा,
0: बिल्कुल।
1: है ना। आज देखिए मतलब क्या, किस स्तर पे वो गाना

0: पहुंच
1: बिल्कुल
0: गया।
1: बिल्कुल। और
0: इतनी
1: पुष्पा जी जैसी गायिका, जो कि बहुत ही जहीन एक गायिका है, उनके
0: हाँ
1: साथ गाना
0: मैं
1: आपको मिला।
0: बिल्कुल, और मैं मुझे पता ही नहीं कि पापा जी ने उनको क्यों चुना इस पर। मैंने जब फिल्म देखी तो वो उस कैरेक्टर के साथ जो उनकी आवाज,
1: वो वही थी
0: ये उन लोगों की ग्रेटनेस
1: जी, वो
0: थी,
1: पुष्पा जी की
0: है
1: ही
0: ना।
1: आवाज हो सकती थी।
0: मुझे जब ये सवाल करते हैं, वो आप कीजिएगा जरूर, कि तब के संगीत और अब के में क्या फर्क है,
1: जी मेरा ही
0: कीजिएगा
1: सवाल
0: जरूर,
1: है,
0: तब मैं आपको
1: जी मेरा
0: बताऊंगी
1: ही
0: कि
1: सवाल
0: क्या
1: है।
0: फर्क है। बस वो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मतलब कितने लोग फोन करके कहते हैं कि किसी बैंक के मैनेजर ने मुझे कॉल किया, वहां कोई हमारा एक सिंगर गया था, स्टेज पे गाता है बच्चा, तो वो गाना बज रहा था, और सब, वो जब गया तो सब बिल्कुल खड़े होकर विनम्र तरीके से
1: खड़े हो गए
0: बस वो गाना,
1: जी।
0: वो बंद हुआ, फिर सब बैठ गए, चलो अब काम। तो वो बोले, पता है ये मेरी दीदी ने, दीदी ने, तो बोले हाँ सुषमा, अरे वही पूर्णिमा दीदी, उन्होंने गाया है। तो मैनेजर ने मुझसे बात किया और बोली कि आपके गाने से हम दिन की शुरुआत करते
1: करते
0: हैं,
1: हैं
0: हम कितने भाग्यशाली हैं, आप प्लीज आइएगा हमारे
1: जी
0: बैंक में, सिर्फ
1: जी
0: आइएगा
1: जी
0: तो हम सोचे, हमको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ पा लिया।
1: जी
0: मैंने सुना है स्कूल्स में गाते हैं, इवन बच्चों के शायद सिलेबस में, शायद मैंने सुना है, मुझे पता नहीं।
1: और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब आकाशवाणी की
0: जी
1: दुनिया में
0: जी
1: हम कई बार, जब हमें देशभक्ति गीत बजाने होते हैं या
0: जी
1: मोटिवेशनल सॉन्ग बजाने होते हैं,
0: जी
1: तो ये गाना नंबर वन पर होता है।
0: देखिए,
1: मतलब हर आकाशवाणी से ये गाना बजा है, हर आकाशवाणी से। और विविध भारती में भी कितनी बार इस गाने को
0: है
1: हर
0: ना।
1: उद्घोषक ने बजाया है।
0: और अफसोस कि जिन लोगों ने, जो जुड़े हैं इस गाने के साथ, पापा जी, कुलदीप सिंह जी, अभिलाष जी, तो बेचारे उनका तो निधन हो गया, उनको वो कैसे कहूँ, वो
1: हाँ वो
0: पहचान, वो
1: स्थान।
0: स्थान नहीं मिला जिसके वो काबिल हैं,
1: बिल्कुल,
0: जिसके वो हकदार हैं।
1: कुलदीप सिंह जी के तो म्यूजिक की अगर हम बात करने चलें तो एक लंबा समय निकल जाएगा।
0: कितने गुणी,
1: बहुत
0: बाप रे।
1: बहुत बिल्कुल।
0: तो
1: तो चलिए
0: इतने
1: ये गीत हम सुनते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: देखिए, इस गीत को सुनने के बाद हम भी वैसे ही हो गए जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि ये गीत हमें कितनी गहराई की ओर ले जाता है ना। तो पूर्णिमा जी, हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं बचपन से अभी तक का जो आपका सफर है गायिका बनने का, उस विषय पर। और ये बातचीत तो हमारी बहुत ही रोचक और शानदार हो रही है, हमारे श्रोता भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे यकीनन। लेकिन सुषमा से पूर्णिमा आप कैसे बनी, ये जो सफर है ये भी हम जानना चाहते हैं कि सुषमा से पूर्णिमा बनने तक का ये सफर कैसा रहा। तो चलिए, ये बातचीत हम करेंगे अब अगले अंक में।
1: बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। अभी आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई, इसका तीसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: डूपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।

देश के सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। वक्त की आंधियों में जलती रही है मेरे दिल में तेरी मोहब्बत की कली खिलती रही है। पास आओ या दूर ही रहो पूछो मेरे दिल से क्या चाहते मेरी हैं क्या मिलती रही हैं। कभी मेरी नजरों से तुम खुद को देखना मेरी नजर तेरी नजर से मिलती रही है।

वो इश्क ही क्या जो परवान न चढ़े, वो घटा ही क्या जो आसमान न चढ़े, बीते सदियां बीते जमाना लेकिन वो हुस्न ही क्या जो किसी का अरमान न बने। तुम मुझे भूल भी जाओ मगर हम याद रखेंगे, छोड़ देंगे दुनिया अगर मेरा इश्क ही मेरी पहचान न बने।

तन्हाई के इस घड़ी में मेरा कोई नहीं है, याद आते हो तुम बेसबब आज मुझे इस तरह। भटकता फिर रहा हूं इस अनजान शहर में, डेरा कोई नहीं है। पुकारता हूं तेरे नाम को बस एक ही आसरा, तेरे सिवाय जमाने में मेरा कोई नहीं है।

आप सुन रहे हैं छाया की। यूं तो देखा नहीं है पहले कभी, पर लगता कोई गहरा नाता है। एक झलक में कोई कहां दिल को इतना भाता है। कोई बात जरूर तेरी आंखों के चमक में, तेरी एक नजर से रोशन दिल मेरा हुआ जाता है। फेर के नजर यूं ना जाओ मुझसे दूर, इस बात से ही दिल मेरा घबराता बहुत है।

0: अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी के क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
1: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम।
0: श्री शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विश्वनाथ, सांसद एन के प्रेमचंद्रन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य लोग शामिल हुए। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुरनूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर ही नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरोपेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। महाराष्ट्र के मुंबई में प्रतिष्ठित लाल बाग चराजा और चिंचपोकलीचा चिंतामणि सहित कई गणपति प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया गया। हजारों श्रद्धालु 21 घंटे से अधिक समय तक चले जुलूस में शामिल हुए। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशीष चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नील

0: भी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विश्वनाथ, सांसद एन के प्रेमचंद्रन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO के बाद इन दस्तावेजों को इसीनेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्तियों को मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं बुलाएंगे। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनिसंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेनदेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरल के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग लेंगे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुर्नूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तरजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। उधर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं के 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। स्क्वॉश में जोशना चिनप्पा और वेलावन संथल कुमार की मिक्स डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Election Commission today said that booth level officers or BLOs will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing Special Intensive Revision or SIR to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECI net platform. The decision was taken during a meeting held by the Election Commission in New Delhi. The commission clarified that such persons will not be called for hearing by the electoral registration office.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म

0: अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन

0: के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
2: इसी SIR को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
3: NCCF द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
1: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
3: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
4: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
5: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से

0: मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
2: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
1: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
5: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
3: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
6: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी

0: का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्कॉश में जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की मिक्स डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Election Commission reiterates that order for SIR issued for all states and UTs with its unanimous approval. Says booth level officers will visit homes of electors issued notice during SIR to collect required documents. Union Minister Amit Shah inaugurates several NCCF initiatives in Kerala to boost women's empowerment through cooperatives. Chief Justice of India Suryakant says drug abuse among children must be seen as child protection issue. External Affairs Minister S. Jaishankar to address United Nations General Assembly in New York tonight. And in Asian Games, Indian men's and women's kabaddi teams clinch gold medals in Japan. Tajinder Pal Singh Tur wins silver in men's shot put. India's medal tally reaches 30 with 4 gold, 12 silver and 14 bronze. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision, SIR, of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said, a meeting of the Commission was held today where Chief Election Commissioner Ganesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and